0: दिल्ली पुकारा इस प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में सुनेंगे कुछ खास गीत जो आधारित है आंखों पर। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मानव जन्म मिलना ये बहुत भाग्य की बात है, उसमें भारत में जन्म लेना ये उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है जो हमें मिला है। एक बड़ा ही प्राचीन देश, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन धरोहर, इतना बड़ा विश्व देखना, महसूस करना शायद इन सबसे बढ़कर कोई बात नहीं। भगवान ने जैसे नजराना दिया है इस जीवन का, ये सारा जीवन देखने के लिए आंखों का, जिनके जरिए हम देखते हैं सारी दुनिया, बस इन आंखों की तारीफ करेंगे आज के दिल्ली पुकारा में।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की

आंखें या नेत्र नयन जीवनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। कवि गीतकारों का एक बड़ा ही प्रिय विषय आंखें। अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म आंखें से।

भेजता है और मानव देख सकता है। जिन आंखों के कारण इंसान इस रंग बिरंगी दुनिया का मजा ले सकता है, उन्हीं के बारे में बातें करेंगे आज के प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल पुकारा। दोस्तों, आंखों के बारे में इतनी सारी चौंका देने वाली बातें हैं जो हम नहीं जानते। इंसान की आंखें एक कैमरा होती है, उसकी क्षमता 576 मेगापिक्सल के बराबर होती है। इंसान जो भी देखता है वो बात उसमें कैद हो जाती है। हम अपने दिन के समय का 10% हिस्सा पलक झपकने में बिता देते हैं, जो पूरे दिन के आधे घंटे के बराबर है। और पूरी जिंदगी भर का पलक झपकने का समय जोड़ेंगे तो यह 1 साल से भी ज्यादा होगा।

दिल पुकारा में अभी अपने जो गीत सुना वो था फिर वही दिल आया हूँ से गाया था आशा भोसले ने। संगीतकार थे ओपी नैयर और ये नगमा लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। आंखें नींद उड़ा देने वाली इन आंखों पर रचे गए गीत सुनेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रकृति ने हमारी आंखों को ऐसा बनाया है कि आंखों से संबंधित कई परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाती है। अगर

आपकी आंखों में कोई स्क्रैच हो जाए तो कार्निया उसको 2 दिन के अंदर ठीक कर देता है। इसलिए तो दोनों बलशाली है, यह आंखें ताकतवर है, क्योंकि शरीर का यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिमाग के बाद आंखें ही हमारी शरीर का सबसे जटिल संरचना वाला अंग है। आंखों के बारे में बातें करेंगे आज के दिलीप कारा में दोस्तों।

चिराग इस फिल्म से गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी ने गाया हुआ, लिखा था मुजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतकार थे मदन मोहन। दोस्तों मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। दोस्तों कहते हैं कि जब कोई चौंकाने वाली बातें होती हैं तो आंखें इसे फाड़ फाड़ कर देखती हैं। सचमुच ऐसी चीजों को देखते ही आंखें 45% बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो बात आंखों से परिचित नहीं होती। ऐसी आंखें, और कवि कहते हैं कि जो बातें होठों से नहीं कही जाती वो आंखों से कही जाती है। कई बार तो ये आंखें बोलती है, भेद सारे खोलती है।

दिल्ली पुकारा में अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म कोहरा का। संगीतकार थे हेमंत कुमार, गायक भी थे हेमंत कुमार, गीतकार थे कैफी आजमी। दोस्तों आंखों की कीमत हम क्या जाने, वो तो किसी अंधे को पूछिए। पर दोस्तों अंधों को अलग आंखें दी है भगवान ने, जो आम मनुष्यों से भी ज्यादा तेज होती है। मनुष्य द्वारा सीखी जाने वाली सभी चीजों का 80% ज्ञान आंखों के माध्यम से ही हो जाता है। आंखें इतनी तेज सेंसिटिव होती है कि मोमबत्ती की लौ को 2.7 किलोमीटर से भी देखा जा सकता है। तो ये शराबी गुलाबी नशीली आंखें जिनके बिना संसार सूना है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन आंखों में ही बसा है ये सारा संसार, ये सारा विश्व।

दिल पुकारा में अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म किस्मत से, गाया था महेंद्र कपूर ने, गीतकार थे SH बिहारी और संगीतकार थे ओपी नैयर। दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण आंखें, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए इनकी रोशनी कायम रहे इसलिए आंखों की नसों को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले तो लैपटॉप मोबाइल ज्यादा देर ना देखे और जितना हो सके उतना दृष्टि से हरे पेड़ पौधे फूल देखा करे, गाजर कद्दू पत्ते वाली सब्जियां खाएं, आंखों से संबंधित व्यायाम जैसे कि आंखों को गोल गोल घुमाना, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखना, फुल बॉडी एक्सरसाइज करने से भी आंखें मजबूत होती है, धूम्रपान ना करें और नियमित जांच करें। दोस्तों, आंखें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए तो ये बातें सचमुच सुनते तो है हम मगर सुनकर छोड़ भी देते हैं, इसलिए ना छोड़े, अपनी आंखों को संभाल कर रखिएगा। बुरा मत देखिए, बुरा मत कहिए, बुरा मत सुनिए। दोस्तों, ये गीत सुनकर खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार।

0: दिल्ली पुकारा इस प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में सुनेंगे कुछ खास गीत जो आधारित है आंखों पर। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मानव जन्म मिलना ये बहुत भाग्य की बात है, उसमें भारत में जन्म लेना ये उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है जो हमें मिला है। एक बड़ा ही प्राचीन देश, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन धरोहर, इतना बड़ा विश्व देखना, महसूस करना शायद इन सबसे बढ़कर कोई बात नहीं। भगवान ने जैसे नजराना दिया है इस जीवन का, ये सारा जीवन देखने के लिए आंखों का, जिनके जरिए हम देखते हैं सारी दुनिया, बस इन आंखों की तारीफ करेंगे आज के दिल्ली पुकारा में।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की

आंखें या नेत्र नयन जीवनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। कवि गीतकारों का एक बड़ा ही प्रिय विषय आंखें। अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म आंखें से, गाया था मोहम्मद रफी ने। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। उच्च स्तरीय जंतुओं की आंखें एक जटिल प्रकाशीय तंत्र की तरह होती है जो आसपास के वातावरण से प्रकाश एकत्र करता है, प्रकाश को सही स्थान पर केंद्रित करता है। इस प्रतिबिंब को संकेतों की तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क के पास भेजता है और मानव देख सकता है। जिन आंखों के कारण इंसान इस रंग बिरंगी दुनिया का मजा ले सकता है, उन्हीं के बारे में बातें करेंगे आज के प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिलीप कारा। दोस्तों, आंखों के बारे में इतनी सारी चौंका देने वाली बातें हैं जो हम नहीं जानते। इंसान की आंखें एक कैमरा होती है, उसकी क्षमता 576 मेगापिक्सल के बराबर होती है। इंसान जो भी देखता है वो बात उसमें कैद हो जाती है। हम अपने दिन के समय का 10% हिस्सा पलक झपकने में बिता देते हैं, जो पूरे दिन के आधे घंटे के बराबर है। और पूरी जिंदगी भर का पलक झपकने का समय जोड़ेंगे तो यह 1 साल से भी ज्यादा होगा।

दिलीप बुखारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिर वही दिल लाया हूँ से, गाया था आशा भोसले ने, संगीतकार थे ओपी नैयर और ये नगमा लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। आंखें नींद उड़ा देने वाली इन आंखों पर रचे गए गीत सुनेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रकृति ने हमारी आंखों को ऐसा बनाया है कि आंखों से संबंधित कई परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाती है। अगर आपकी आंखों में कोई स्क्रैच हो जाए तो कार्निया उसको 2 दिन के अंदर ठीक कर देता है, इसलिए तो दोनों बलशाली है। यह आंखें ताकतवर है क्योंकि शरीर का यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, दिमाग के बाद आंखें ही हमारी शरीर का सबसे जटिल संरचना वाला अंग है। आंखों के बारे में बातें करेंगे आज के दिलीप कारा में दोस्तों।

चिराग इस फिल्म से गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी ने गाया हुआ, लिखा था मुच्चू सुल्तानपुरी ने और संगीतकार थे मदन मोहन। दोस्तों मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। दोस्तों कहते हैं कि जब कोई चौंकाने वाली बातें होती हैं तो आंखें इसे फाड़ फाड़ कर देखती हैं। सचमुच ऐसी चीजों को देखते ही आंखें 45% बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो बात आंखों से परिचित नहीं होती। ऐसी आंखें, और कवि कहते हैं कि जो बातें होठों से नहीं कही जाती वो आंखों से कही जाती है। कई बार तो ये आंखें बोलती है, भेद सारे खोलती है।

दिल्ली पुकारा में अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म कोहरा का। संगीतकार थे हेमंत कुमार, गायक भी थे हेमंत कुमार, गीतकार थे कैफी आजमी। दोस्तों आंखों की कीमत हम क्या जाने, वो तो किसी अंधे को पूछिए, पर दोस्तों अंधों को अलग आंखें दी है भगवान ने, जो आम मनुष्यों से भी ज्यादा तेज होती है। मनुष्य द्वारा सीखी जाने वाली सभी चीजों का 80% ज्ञान आंखों के माध्यम से ही हो जाता है। आंखें इतनी तेज सेंसिटिव होती है कि मोमबत्ती की लौ को 2.7 किलोमीटर से भी देखा जा सकता है। तो ये शराबी गुलाबी नशीली आंखें जिनके बिना संसार सूना है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन आंखों में ही बसा है ये सारा संसार, ये सारा विश्व।

दिन पुकारा में अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म किस्मत से, गाया था महेंद्र कपूर ने, गीतकार थे SH बिहारी और संगीतकार थे ओपी नैयर। दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण आंखें, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए, इनकी रोशनी कायम रहे इसलिए आंखों की नसों को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले तो लैपटॉप मोबाइल ज्यादा देर ना देखे और जितना हो सके उतना दृष्टि से हरे पेड़ पौधे फूल देखा करें। गाजर कद्दू पत्ते वाली सब्जियां खाएं। आंखों से संबंधित व्यायाम जैसे कि आंखों को गोल गोल घुमाना, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखना, फुल बॉडी एक्सरसाइज करने से भी आंखें मजबूत होती है। धूम्रपान ना करें और नियमित जांच करें। दोस्तों, आंखें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए तो ये बातें सचमुच सुनते तो है हम, मगर सुनकर छोड़ भी देते हैं, इसलिए ना छोड़े। अपनी आंखों को संभाल कर रखिएगा। बुरा मत देखिए, बुरा मत कहिए, बुरा मत सुनिए। दोस्तों, ये गीत सुनकर खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार।

मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।